मिलन गीते चित्रपट सिंगल चित्रपट संगीत नैतिक रसिया लता वालपुर के हंड्रेड थी मृदु सुगंध सिनेमा लोके हैंगिन सेमिंग गलायन विद्य युवसनु हदे गीते तुने होंदी मदैन मैं गीते असुवीत हितत एन्ने नियंद मोहतक सिनेमा दर्शनयक वगे हदवतते अतुलट सेमिंग वेटन संगीत मुत्तुसामी के संगीत मैं गीते देने हैंगिम अतिशय सरलाई एत गीतेट गलपना मृदु रिद्म्यक सांसुं वर्णयक सा सिनेमा रसय गेनन शब्दयक लता वालपोलगे हंड मे गीतेट देने आलोके हुंगक विशेषय सेमिंग सांसुं हदवत लंगावेन हैंगिम मे गीते ओबे दवसेट सांसुं सोयक गेनन लंका रेडियोयें युवसनु हदे गीते दैं होयट नोकाइन लीड From the Ruiga Gevulpola atmosphere, classic Sri Lankese is a film site. Ainge feng, Yuvasanu Hade, Gesungan from Lata Walpola un worked vi ein sanfte film scene voller Ruhe und Gefühl. Ein Lied, das innere Ruhe senkt und die Eleganz. Vergangene Filmzeiten wieder lebendig machen. Jetzt bei Lanka Radio. Yuvasanu Hade.

मिलन गीते सिंगल चित्र प्रसंग गीते रसा लता वालपुर के हांडट थी न ए मुर्दु स्वीरी सुदु शब्दे सा गीते रे जीवे दिन हंगीम सुललित वो कला तुला सेमिंग बिरुते न मैं गीते असुवित हित देने सिनेमा लोके मोहतक सेमिंग गलायन संगीते निहंड वार्न लता वालपुर के हांडिंग लोके मुर्दुले से विरुद्ध वेन हैंगी मुत्तुसामी के संगीते में गीते देन रसे अतिसे सरलाई एत गीते टे गलेपना उरिंग मुर्दु रिद्म्यक सांसुं वर्नेक सा पारन सिनेमा रसे गेन संगीते लता वल्पल के गायने में गीते देन आलो के हुंगक विशेषाई सेमिंग सांसुं हदवर्त टे लंगावेन हैंगी मग अद में गीते ओबे दवसत सोंद पिनु सांसुं रसे गेनो लंका रेडियोइंग सुललित वु कला So you heard next lead, Sulalita Ukala from Lata Walpole.